Mädchen, ne? Meine Lette, du bist. Aus Ratko. Darum nicht. Bad ist, wo Ras geht. Aber Ras, Ras hier bleibt. Mein Name ist Shabnam. प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है मीना मीना अंजू या मंजू मीना मीना अंजू मंजू या मधु

रोज रोज रात भर शर्माएं बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानते हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।